0: celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 PM onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT395.
1: Radha Swami Taran Taran De Dera Mukhi, Baba Paramjit Singh Ji De Adhyatmik Satsang Vich Shamil Hon Layi Aap Ji Nu Benti Kiti Jandi Hai. Satsang 27 जून दिन शनिवार दोपहर 12 बजे तो है जी। स्थान ऑस्कर फ्रे हॉल यूसली एंड वेस्ट ड्रेटन कम्युनिटी सेंटर 228 हरमंडसवर्थ रोड वेस्ट ड्रेटन UB79JL। सत्संग तो बाद गुरु का लंगर वरताया जाएगा। किसी भी तरह की जानकारी ले संपर्क करो जी 07956648913। जी आया
2: For men and women who want it all, Wellman and Wellwoman multivitamin gummies are great tasting, vegan and packed with 22 nutrients too, including vitamin B12 to support normal energy release. Wellman and Wellwoman, yummy gummies with serious science. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. From Boots, pharmacies and vitabiotics.com.